0: ता करते जन्म सिरानो कबू ना सिमर्यो राम। कहे कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुक्त गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उत्तर सपार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया। अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया, अखड़ घड़िया तहां अप्यो पिया। मन आदि गुण आदि वखाणिया, तेरी दुबदा दृढ़ समानिया। रहाओ अर्ध कौ अर्धया, सर्द कौ सर्दया, सलल कौ सलल समान आया। बदत जय देव जय देव कौ रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियारा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा। रहाओ लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहेगा। तन जोबन का गर्भ ना की जय, कागद ज्यों गल जाहेगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किश ना बसाहेगा। सिमरन भजन दया नहकीनी, तौ मुख चोटा खाहेगा। धर्म राय जब लेखा मांगै, क्या मुख लै कै जाहेगा। कहत कबीर सुनौरे संत हो, साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत तरे। रहाओ जा की शोत जगत कौ लागे, ता पर तू ही टरे। नीचे उच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे। कह रविदास सुनोरे संतो, हर जियो ते सबै सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मानो, काम तेन बस जा केरे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवनिध कर तलता कै। हर हर हरना जब सरसना, अवर सब छाड़ बचन रचना। रहाओ नाना ख्यान पुराण बेद बिद, चौतीस अक्षर माही। ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सर नाही। सहज समाध उपाद रहत होए, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी।
1: You have just heard a recital from the Sikh holy book, the Guru Granth Sahib. We now offer you some Buddhist music. One of the most widely known Buddhist practices today is Vipassana meditation, which focuses on direct experience and observation, and where the meditation object is one's own consciousness. It involves a detached observation of the reality of the mind and body from moment to moment, a practice which can lead to an experiential understanding of the impermanence of the mind's reality.